اوكي اوكي هلو هلو هلو هلو هلو مايك تشيك. किसी को नफरत है मुझसे, किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार करके बैठा है, किसी को यकीन नहीं है मुझ पर, किसी को यकीन नहीं है मुझ पर कोई इतबार करके बैठा है, कितनी अजीब है ना दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार

बिल्कुल जनाब, खगावाज़ एफएम 94 यानी कि एफएम सलूर नवी रेडियो रेडियो रेडियो दिलबर सवाबी। दिस इज मी योर होस्ट योर दोस्त, यू आर सुपर डुपर हान, यू आर ग्रेट हान, आरजे आरजे आकिब जान जो दिन मत वाले की। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम बिल्कुल लाइव एंड बराह रास्त गो पेशो भी बजे गो ठीक चर लसु बजू पूरी वजह मंगा सासु डगा मल करती आवी आओ पदागे प्रोग्राम के बस बलाडी रिजियाती खबरी तरीकी की। पदागे प्रोग्राम के बस सासु लाइव कॉल जिम शामिलेगी, पदागे प्रोग्राम के बस सासु मैसेज जिम शामिलेगी, दतरु कॉल दतरु मैसेज इस पदारा बतासु जगे प्रोग्राम तराजे मंगसरा पार्टिसिपेशन कवे यानी के शिरकत पर असर कवे। हाँ वही कना सवैया वही मराजा बदनाम बशी वक्त न बदल शिवी दी, ए मराजा बदनाम बशी वक्त न बदल शिवी दी, औ यार पदे चमके रिवाजुना बदल शिवी दी, औ सोकड़ महुदाय अखपल अशनास्तर की बदल इकड़ी दासी मालूमी की जोड़ी जुड़ू न बदल शिवी दी, उस पर की दमीनी मोहब्बत खबर ही न कीगी, उस पर की दमीनी मोहब्बत खबर ही न कीगी, दिल तक की हुजरी और जुमातू न बदल शिवी दी, उस अक्रम होशाल मतलबी आरान डिर शिवी दी, उस हा सपा सपा नियतू न बदल शिवी दी। यप माग्रान दुम्र होगी, जर्श मस्तान दुम्र होगी, औ मणख पल जान फकी तयात कमा, औ याकिब जाना दुम्र होगी, ये मुसलमाना दुम्र होगी, औ जमा जाना दुम्र होगी, औ चि दिनुम सरा रही कावी गुटमा। जनाब प्रोग्राम बिल्कुल लाइव जी नंदा बोधी यानी कि शुरू रजदा दासदाम जी मॉर्निंग टाइम मंगसर स्टूडियो पर गए टाइम शो ने वल्लस मिनट आओ नह बजे वल्लस मिनट आओ नह बजे मंगसर स्टूडियो पर गए टाइम शो दे ओ द पगम म्याष्टी वल्लस मिनट काल दो जरा पगिष्टम देहा दासिदा माथ चा फीडबैक राकड़े देखने फीडबैक माथ चांद दे राकड़े ईमान डटो पाए ने मैसेज डाली की आवाज जो ओके दे डेरा मंदना मुनी बामंग तेरे सवाबाई ने मैसेज डाली की डेरा मंदना उच्च आवाज जी ओके दे मेरा मानना आमना अप्रीति मंगता मैसेज डाली की आवाज जी ओके दे आमना द कलाबट ने मंगता मैसेज डाली की आवाज जी ओके दे हसीना मंगता द सासु डिलीज़ है सुन पुआ पेनुश मखबार हाल मैसेज डाली की आवाज जी ओके दे डेरा डेरा

बिल्कुल जनाब, रसीखा संगा जगह मॉर्निंग टाइम ब्यादा किब जान डगा प्रोग्राम लगी हाँ एक न होने दर के

0: रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज, दिल की आवाज।
1: We're the station that really does play today's best music with 30-minute all-hit power plays.

0: मेडिकल वार्ड जनरेटर और नोटोई जरूरी सहूलियात मौजूद थी। नो पतयात साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी। मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।
1: रेडियो दिलबर रेडियो दादी रेडियो दिलबर स्तासु दजरावास।

0: 444-5858-88.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
0: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हो कुचरता ददग ज्वानको पवख बाने गम उनकलेशी न प रारवान वक की दग ज्वान के स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयल स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज दाना द दग दानो चकम दागुन दी अगर हम प मुकम्मल तो गबाने खत्म हीगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कम ची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन सासु दाने और दानो दागुना प मुकम्मल तोगबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है. हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. वही यकीन, वही उम्मीद, आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड, शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब, शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं, एक इंसान समझा जाता है. जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं, बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है. चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, अलिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331

9394941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। हेरास डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल।

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर।
2: खुश खबरी, हगा ठोल बीमारान चदचा हड़ुकी माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो औ दला सुनो गुतो रघुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी औ दचाचे दखपो दकुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगाटोली जनाना चिदचा सुनकीगी औ हगाटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो याद पटो मरीजान हुई याद माशुमानो खपी कगी हुई नु दहा टोलो मरीजानो द पारा द खुशालय खबर उस बाद हर इतवार पर उस बांदी सहर द अतो बजो नवाखली माजीगर तर सलोर बजो पूरे द इस्लामाबाद और द पेखवर ऑर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर सेब MBBS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अतो बजो नवाखला माजीगर तर सलोर बजो पूरी तासो तशरीफ रवड़े शे नो पता यार साथे जा अल सेद CNG ता महामख कोंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी मजीद रा याद नंबर पदे नंबर राबितो के 0314-15-13-232 यानि के 0314-15-13-232।
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز و موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ بہ موجود ہوئی زمون سہولت NICU یعنی پارا د شیشو سہولت ایکو ECG ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لباسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستہ راتلون کے پیشنٹس دا پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز

0: को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801003 पर राबता कर सकते हैं।
1: माँ वेले माले द शारजाना काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी ता सिंगल आर शमा
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चट्टची द दुबई और द शारजा टूले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया का ना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732 65।
3: टोपी मेडिकल केयर सेंटर कमजे चिप मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड अवाम द खिदमत लपारा मौजूद हुई चिपकी डॉक्टर आमिर असलम कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट दैतवार परवज लस बजो ना तरमाखाम सलोर बजो कोरे लेडी डॉक्टर फरीहा मुश्ताक फिजियोथेरापिस्ट द फिर नर जुमेरात रसपोरे सहर नह बजो ना तरमाजीगर सलोर बजो कोरे डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट दैतवार परवज यवोलस बजो ना तरमास फिंद्रे बजो कोरे गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिर अमराज जच्चा बच्चा द पीर नतर हफ्ते पूरी माजीगर द सलूर बजो ना तरमास होतन अतो बजो पूरे बाओपीडी कवि जमू सहूलियात ती 24 घंटे सर्विस लेबर रूम अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी पेशेंट मेडिकल वार्ड जनरेटर और नो टूल जरूरी सहूलियात मौजूद थी नो पता याद साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर आयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।